0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ आपका मित्र अजीत। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि जंघेल, ओशिका और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है। लिखते हैं, अपनों की कही बात का दर्द सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चोट शब्दों से ही नहीं भरोसे के टूट जाने से भी बहुत अधिक लगती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुविचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम सुनकर हमारे जीवन में सदैव ज्ञान, प्रेरणा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। उदाहरण के लिए, आपने 9 सितंबर को प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत पहाड़ से भी ऊंचा आदमी यानी दशरथ मांझी के जीवन के दृढ़ संकल्प की पूरी दास्तान को इतने रोचक ढंग से वर्णित किया कि किस तरह पहाड़ की बाधा के कारण उनकी घायल पत्नी को समय पर इलाज न मिलने की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। लगातार 22 वर्षों तक अपनी कठिन मेहनत के द्वारा दशरथ मांझी जी ने पहाड़ काटकर 110 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया। आपके कार्यक्रम से प्रेरित होकर हमने मांझी द माउंटेन मैन फिल्म अपने मोबाइल पर देखा। मन प्रसन्न चित्त और आनंदित हो गया। उमंग की पूरी टीम को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद और बधाई। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, बीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे जी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो पांडे परिवार को हमारी ओर से भी प्यार भरा नमस्कार। अगला संदेश हमें मिला है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर। अगला संदेश सुनते हैं माँ महामाया चौक मेघापारा छत्तीसगढ़ से राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं, उमंग कार्यक्रम हमें बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक लगता है। आपके कार्यक्रम के माध्यम से हमें पूरे भारत की संस्कृति, परंपरा और विविध विषयों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके लिए उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निवेदन है, इसी प्रकार ज्ञानवर्धक जानकारियों से हमारा ज्ञान बढ़ाते रहें। अगला संदेश मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया जी का। और अंतिम संदेश हमें मिला है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू और जामुन देवी साहू का। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। चलिए एक बार फिर से चलते हैं आविष्कारों की रोचक यात्रा में। श्रोताओ, जरा कल्पना कीजिए, आप आसमान में हैं, नीचे धरती बहुत छोटी दिखाई दे रही है, चारों तरफ तेज हवा चल रही है और अब आपको

मान से छलांग लगानी है। श्रोताओं, ये सुनकर ही मन में डर पैदा होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक विकल्प है, अगर आपके पास पैराशूट हो तो, आप कहेंगे, तो शायद सोचा जा सकता है। जी हाँ श्रोताओं, यही पैराशूट आज लाखों लोगों के लिए आसमान से सुरक्षित नीचे आने का साधन है। सैनिक इसका इस्तेमाल करते हैं, स्काई डाइविंग वाले लोग करते हैं, और कई आपात स्थितियों में भी पैराशूट जीवन बचाने में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इंसान के मन में पैराशूट बनाने का विचार आया कैसे? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। श्रोताओं, इंसान ने पक्षियों को जब उड़ते देखा, या शायद उसने कभी किसी बड़े से कागज के टुकड़े को यदि ऊंचाई से गिराया हो, तो उसे धीरे धीरे नीचे गिरते हुए देखकर सोचा होगा, क्या हम भी हवा का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे सुरक्षित उतर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल। और इसी विचार की एक बहुत पुरानी झलक हमें महान कलाकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो विंची के काम में मिलती है। सन 1483 में उन्होंने एक ऐसी संरचना का चित्र बनाया था जो पैराशूट जैसी दिखाई देती थी। उन्होंने कल्पना की थी कि कपड़े और डंडों से बनी एक संरचना इंसान को हवा में नीचे उतरने में मदद कर सकती है। श्रोताओं, विज्ञान अक्सर कल्पना से ही शुरू होता है, लेकिन कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए किसी को प्रयोग करना होता है, किसी को शुरुआत करनी होती है ना? तो आइए जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन था जिसने पैराशूट के बारे में व्यावहारिक रूप से सोचा। अब हमारी कहानी पहुंचती है 18वीं सदी के फ्रांस में। उस व्यक्ति का नाम था आंद्रे जैक गार्नेनिन। वर्ष था 1797 का, स्थान था पेरिस। गार्नेनिन एक गुब्बारे में बैठकर ऊपर उठे। उन दिनों गुब्बारा ही आसमान में जाने का एकमात्र साधन था। आपको बता दें श्रोताओं कि उनका पैराशूट एक विशाल छाते जैसा था और उसके नीचे एक टोकरी लगी हुई थी। क्या बताऊं, उस दिन उनका प्रदर्शन देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ एक मैदान में जमा थी। 22 अक्टूबर 1797 का वो दिन बहुत रोमांचकारी था। गार्नेनिन लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे और पैराशूट बांधकर नीचे छलांग लगा दी। जरा सोचिए श्रोताओ, उस समय नीचे खड़े लोगों क्या हालत हुई होगी, ऊपर से कोई व्यक्ति छलांग लगा रहा है। मित्रों, लोगों की तो मानो सांस ही रुक गई। सोचिए, भीड़ आसमान की ओर देख रही है, अचानक एक व्यक्ति गुब्बारे से अलग होता है, कुछ क्षण के लिए वह तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। लोगों को लगता है अब ये धरती पर आ गिरेगा, लेकिन फिर उसका विशाल पैराशूट खुलता है और वो धीरे धीरे धरती की ओर उतरने लगता है। श्रोताओं, गार्नेनिन ने उस दिन सफलतापूर्वक अपना प्रदर्शन पूरा किया। तो श्रोताओं, इस तरह दुनिया के पहले पैराशूट का आविष्कार हो चुका था। उस समय ये किसी जादू से कम नहीं था। लेकिन रुकिए श्रोताओं, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अब आती है हमारी इस कहानी की नायिका। उनका नाम था जीन जेनेवीव लाब्रोस। वो एक महिला थी और यही बात इस कहानी को और खास बनाती है। जीन जेनेवीन लाब्रोस गार्नेनिन की शिष्या थी, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। 12 अक्टूबर 1799 को उन्होंने लगभग 900 मीटर की ऊंचाई से पैराशूट द्वारा सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रच दिया और वे दुनिया की पहली महिला पैराशूटिस्ट बनी। साथियों, आज से 200 साल से भी अधिक पहले, जब महिलाओं के लिए ऐसे साहसिक सार्वजनिक प्रयोग बहुत असामान्य थे, तब उन्होंने आसमान से पैराशूट से छलांग लगाई। उन्होंने सिर्फ छलांग ही नहीं लगाई, लेकिन पैराशूट में सुधार भी किया। उन्होंने पैराशूट के विकास में रुचि ली और 1802 में एक बेहतर पैराशूट डिजाइन के लिए पेटेंट भी करा लिया। श्रोताओं, अंत में आपको बता दें कि आज के पैराशूट उन शुरुआती पैराशूटों से बहुत अलग हैं। आज पैराशूट को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह हवा का प्रतिरोध पैदा करे और गिरने की गति को नियंत्रित करे। पैराशूट के आकार, कपड़े, रस्सियों और खुलने की व्यवस्था सब पर बड़ी बारीकी से काम किया जाता है। वैज्ञानिक भाषा में बता दूं, पैराशूट का असल काम है गुरुत्वाकर्षण के बल को कम करना, ताकि इंसान हवा में धीरे धीरे नीचे सुरक्षित उतर सके। तो श्रोताओं, इस पूरी कहानी से एक बड़ी सुंदर बात सामने आती है कि बड़ा आविष्कार अक्सर एक छोटे से सवाल से शुरू होता है। जैसे उनका सवाल था, क्या इंसान भी हवा का सहारा लेकर सुरक्षित नीचे उतर सकता है? और जब इसी सवाल को उन्होंने गंभीरता से लिया, तो प्रयोग शुरू हुए, जोखिम उठाए गए और धीरे धीरे पैराशूट विकसित हुआ। सचमुच पैराशूट हवा में खुलने वाला एक कपड़ा नहीं है, इसके पीछे सदियों की कल्पना, प्रयोग, साहस और विज्ञान की कहानी है। तो श्रोताओं, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह कुछ और रोचक विज्ञान कथाओं के साथ। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, दुनिया की पहली पैराशूटिस्ट महिला का नाम बताइए।
प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। दुनिया की पहली पैराशूटिस्ट महिला का नाम बताइए। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं कार्यक्रम व्हाट डू यू डू। अंग्रेजी के इस खूबसूरत गीत के द्वारा बच्चों को पशु पक्षियों की ध्वनि और गतिविधियों के द्वारा जानकारी दी गई है और बच्चों को साथ साथ गाने गुनगुनाने के लिए भी प्रेरित किया गया है।

0: आपने सुना अभी कार्यक्रम व्हाट डू यू डू, और अब सुनते हैं कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा। यह कार्यक्रम मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य और बलिदान के बारे में जानकारी देता है और बताता है कि करगिल युद्ध के दौरान उन्होंने कैसी अद्भुत वीरता का परिचय दिया और देश के लिए शहीद हो गए।
1: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।

0: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। कल शाम दुश्मन की ओर से भारी गोलाबारी हुई। हमारी सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना ने कारगिल से घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन विजय आरंभ कर दिया है। हमारे सैनिक पूरे जोश के साथ इस ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
1: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
0: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
1: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
0: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
2: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
3: क्या बात है,
2: सुनकर ही जोश आ गया।
3: हाँ
2: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
3: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है।

0: इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। एक दिन की बात है, वे अपने स्कूल जा रहे थे। बस खचाखच भरी थी और टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों से होती हुई जा रही थी। अचानक बस ने मोड़ लिया और उसका दरवाजा खुल गया।
1: चलो अस्पताल। पर विक्रम बच्चे, तुम क्यों कूद पड़े बस से? चोट लग जाती तो?
2: अंकल, मुझे लगा कहीं आपको बच्चों की आवाज सुनाई ना दे और बस ना रुके, और फिर अगर ये इस गहरी खाई में गिर जाती तो।
1: विक्रम कमाल है, कमाल है।
3: हीरो
1: हमारा हीरो है।

0: विक्रम को जब कभी भी मौका मिलता वे अपने साथियों की मदद करते रहते। दूसरों की सेवा करने और देशभक्ति का भाव कूट कूट कर भरा था उनमें। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे 2 हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल 1 रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल एक घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। पॉइंट 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
5: कैप्टन विक्रम, पॉइंट 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद।
0: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
3: चलो संभल कर
2: आओ चलो।

0: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
1: जी सर।
0: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
1: जी सर।
0: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
1: जी सर।
2: हमला करो दुर्गा माता की।
3: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
0: नहीं, तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
0: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
4: साहब जी
0: नवीन तुम्हारे पैर तो बुरी तरह जख्मी हैं। चलो बंकर में चलो।
5: घायल तो पैर हैं, हाथ अभी तक सलामत है मेरे, मुझे लड़ने दो।
0: हाँ हाँ लड़ लेना तुम, पर अभी तुम बंकर में चलो। चलो मेरे साथ, मैंने कहा ना चलो।
3: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
5: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
3: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: மெல்லிசை பாடல்.
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi inaugurated and dedicated to the nation five major development projects worth around 3,350 crore rupees in Ladakh today through video conferencing. The projects aim to strengthen connectivity, improve energy infrastructure, conserve cultural heritage, and enhance water security in the region. We now go over live to listen to the Prime Minister's address.
2: उनकी मेहनत और पारंपरिक हुनर से जुड़ी पश्मीना की पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। साथियों, लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यहाँ के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं और यहाँ के उत्सव इन्हें संजोना और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है।
1: The newly inaugurated projects includes new passenger terminal building at Kushok Bakula Rinpoche Airport, Leh, built at a cost of 640 crore rupees. The modern terminal is spread over 23,800 square meters and is designed to handle 35 lakh passengers annually. The Prime Minister also dedicated to the nation the 298 kilometer long Nimu Padum Darcha Road, constructed by the Border Roads Organization, connecting Nimu in Leh with Darcha in Himachal Pradesh through the remote Zanskar Valley. The road provides an alternative connectivity corridor to Ladakh, supplementing the Srinagar-Leh and Manali-Leh highways. Mr. Modi also inaugurated